0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंता बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाओ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली, इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल

बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं अमित कमल आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं घर आंगन कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सामने खड़ी विपत्ति से डरे नहीं बल्कि उसका सामना करें।

गीत आपने सुना इजाजत सिंह से आशा जी की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 90 साल पूरे होने पर आकाशवाणी के बारे में इतिहास की बात कर रहे हैं और इसी में 90 वर्षों का हम सफर आकाशवाणी के आजादी के ऐतिहासिक प्रसारण की अब हम बात कर लेते हैं। आजादी की पहली सुबह और वंदे मातरम की गूंज, 15 अगस्त 1947 की वो सुबह 6:30 पर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी से वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण प्रस्तुत किया। ये गायन सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष अनुरोध पर बंगिया काफी राग में पिरोकर प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रगीत के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करने के लिए पंडित जी ने रेडियो स्टूडियो में खड़े होकर ये प्रस्तुति दी थी। ये गायन केवल संगीत नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बन गया। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी दिया गया।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अमित कमल। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डेज ऑफ द डे की, इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। जी हां, हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं उसका 98% पौधों से आता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका 80% पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन हर साल कीटों और बीमारियों के कारण हमारी लगभग 40% फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और पोषण उपलब्ध कराने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है। इसी समस्या को दूर करने और जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 12 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक वैश्विक दिवस है जो पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व को उजागर करता है, क्योंकि ये भूख को कम करने, गरीबी मिटाने, पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस का इस साल का थीम खाद्य सुरक्षा के लिए पादप और जैव सुरक्षा है, यानी प्लांट बायो सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी है। ये विषय पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाकर वैश्विक खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित रखने

हिमालय की गोद में फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम आपके हित की बात लेकर आते हैं और ऐसी ही एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साथ काम करना चाहते हैं या भारत के बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। हाल ही में DRDO ने दिल्ली और हल्द्वानी के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस इंटर्नशिप में अनुभव के साथ आपको हर महीने पैसे भी मिलेंगे। जो विद्यार्थी BE, BTech और ME, MTech के फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं वो इसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं। DRDO की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की अवधि 6 महीने तक की है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2026 से हो सकती है। चयनित उम्मीदवारों को ₹30,000 दिया जाएगा। शुरुआत के 3 महीने पूरे होने पर ₹15,000 और बाद के 3 महीने पूरे

पर 15,000 रूपए दिए जाएंगे। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 15 दिन इंटर्नशिप में एक्टिव रहना जरूरी होगा और 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी कर लेने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। DRDO इंटर्नशिप के तहत आप www.drdo.gov.in/drdo/en/offerings/vacancy पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सारा प्रोसेस ऑफलाइन होगा।

दोस्तों बहुत से छात्र घंटों पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें कम पर्दा हो और करियर भी सेट हो जाए। आज के समय में ऐसे कई डिप्लोमा कोर्स हैं जिन्हें करके अच्छी सैलरी पाई जा सकती है, और ऐसे ही कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। ये कोर्स 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बीच पूरे हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसे कोर्सेज की तलाश कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करियर की डिमांड में है। इस कोर्स में SEO, सोशल मीडिया और एड्स जैसी स्किल्स सिखाई जाती है।

करने के बाद नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग के मौके भी मिलते हैं, और साथ ही आप ब्लॉग को के बूम होने के कारण, ब्लॉगर्स के बूम के कारण वीडियो एडिटिंग स्किल्स में काफी अच्छी कमाई के अवसर मिल जाते हैं। अगर आपको क्रिएटिविटी काम करना पसंद है तो आप वीडियो एडिटिंग कोर्स कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी है और बीटेक आदि नहीं करना चाहते तो आप वेब डेवलपमेंट में HTML और CSS JavaScript जैसे कोर्स कर सकते हैं। इन्हें सीखकर आप वेबसाइट बना सकेंगे और इसमें भी आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कोर्स करके आप इवेंट कॉर्पोरेट शूट कर सकते हैं। इसके अलावा वेडिंग फोटोग्राफी तो है ही, इसके जरिए आप अपना चैनल भी बना सकते हैं और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। ये सीखकर खुद आप अपना काम शुरू कर सकती हैं और इससे अच्छी कमाई भी होती है। होटल मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स भी आजकल चलन में है, जिसमें आप होटल मैनेजमेंट से जुड़े किसी स्किल्स जैसे कुकिंग, सर्विस डेस्क, फ्रंट ऑफिस यानी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना सम्राट फिल्म से। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम एक न एक सफलता की कहानी आपके साथ साझा जरूर करते हैं और आज ही एक कहानी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव से निकली संजू मिश्रा की कहानी इस बात का उदाहरण है कि सीमित संसाधनों में भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। सिर्फ 10,000 की छोटी सी पूंजी से शुरू किया गया उनका अचार का काम आज सालाना 10 से 15 लाख रुपए के टर्नओवर में बदल चुका है। संजू मिश्रा ने बीएड कर रखी है। उनका सपना था शिक्षक बनना, लेकिन कुछ कारणों से उनका सपना अधूरा रह गया और वो शिक्षक नहीं बन पाए। वे इस समय प्राइवेट इंस्टीट्यूट में शिक्षक हैं, बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाती हैं। संजू मिश्रा कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ अचार का बिजनेस कर रहे हैं। संजू मिश्रा शिक्षक न बन पाने के बाद काफी निराश हो गई थी। उसी समय इनके भाई ने इन्हें मोटिवेट किया और उन्हें बताया कि उनके अंदर एक हुनर है, वो है अचार बनाने का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। इनके भाई ने ही अचार के बिजनेस का आइडिया संजू को दिया। संजू ने मात्र 10,000 से अचार के बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत में संजू मिश्रा ने घर पर ही आम, नींबू और मिर्च का अचार बनाना शुरू किया और वो अपने बनाए अचार को आसपास के गांव और मोहल्लों में बेचा करती थी। उनके अचार का स्वाद इतना अच्छा होता था कि लोगों को काफी पसंद आने लगा। धीरे धीरे उनके अचार की मांग बढ़ने लगी और ज्यादा लोग उनसे अचार खरीदने लगे। संजू मिश्रा के अचार की डिमांड बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने अचार की मात्रा बढ़ाई और अलग अलग तरीके के अचार बनाना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ आम और नींबू ही नहीं बल्कि लहसुन, कटहल और मिक्स अचार भी बनाने लगे हैं। इस समय उनके पास लगभग 18 प्रकार के अचार उपलब्ध हैं। ये सफलता की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता अगर उसे पूरी लगन के साथ किया जाए। और जब आप इस तरीके के काम करेंगे और सफल होंगे तो आपके लिए भी लोग ये गीत गाएंगे।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म से। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम एक छोटी मोटी सी जानकारी आपके साथ हमेशा साझा करते रहते हैं। ऐसी ही एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं दोस्तों। शेफ की टोपी को टोक ब्लैंच कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सफेद टोपी। इसका डिजाइन 16वीं सदी में फ्रेंच किचन से आया था। इसमें 100 प्लेट्स यानी सिलवटें होती हैं, जो उस शेफ के 100 तरीकों के व्यंजन पकाने की कला का प्रतीक मानी जाती हैं। शेफ सिर्फ टोपी को फैशन के लिए नहीं पहनते, बल्कि शेफ की कैप हाइजीन और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। अगर रसोई कोई साम्राज्य है तो शेफ ही उसका राजा होता है और उसके सिर पर टोपी उसका ताज होती है। शेफ की सफेद यूनिफॉर्म में

टोपी सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। शेफ के लिए उनकी टोपी भी राजा के लिए उनके ताज जितनी ही कीमती होती है। लेकिन दोस्तों, टोपी के ऊंची होने के पीछे की वजह से लोग अनजान हैं। आखिर शेफ की कैप ऊंची क्यों होती है, ये सवाल कभी न कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है कि खाने में बाल न गिरे, इसलिए शेफ ऊंची टोपी पहनते हैं। और यही वजह है कि प्रोफेशनल किचन में शेफ को सिर ढककर ही काम करने की इजाजत होती है। इसके अलावा जैसे आर्मी अफसर अपनी यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं, वैसे ही शेफ की पहचान उनकी व्हाइट यूनिफॉर्म और टोपी से होती है। टोपी की ऊंचाई शेफ की पोजीशन और एक्सपीरियंस को बताती है। इसे लेकर एक कहानी भी प्रचलित है दोस्तों, जिसके मुताबिक 16वीं सदी में इंग्लैंड के राजाओं में से एक राजा हेनरी ने भोजन में बाल पाए जाने पर एक रसोई का सिर कटवा दिया था। इस घटना के बाद सभी रसोइयों को खाना बनाते समय टोपी पहनने का आदेश दिया गया था, और इससे उनके बाल पके हुए भोजन से दूर रहते थे और रसोई में स्वच्छता और साफ सफाई बनी रहती थी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए।

वक्त फिल्म से ये गीत आपने सुना आशा जी की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं और बच्चों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों आजकल माता पिता को ज्यादातर यही शिकायत रहती है कि उनका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता या फिर किताबों को देखकर ही वो दूर दूर भागने लगता है। इस वजह से कई बार पेरेंट्स बच्चों पर काफी गुस्सा होने लगते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं। बता दें आपकी आदत बच्चे को पढ़ाई से तो दूर करेगी ही और साथ ही आपसे डर की वजह भी बनेगी। लेकिन इससे और इसके लिए हम आपके साथ कुछ बातें साझा कर रहे हैं जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और वो फोकस भी कर पाएगा। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि घर में जिस तरह का माहौल होता है वही बच्चों के व्यवहार में देखने को मिलता है। दरअसल बच्चे हमेशा अपने माता पिता और घर के बाकी बड़ों से देखकर ही सीख लेते हैं। बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक जगानी हो तो इसके लिए आपको खुद भी उनके साथ बैठकर पढ़ना होगा। इसके लिए आप उनके सामने किताबें पढ़ने बैठ सकते हैं, उनमें से उन्हें कुछ कहानी पढ़ा सकते हैं, सुना सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे बच्चों में किताबों के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाते वक्त पूरा उदाहरण देकर समझाइए। इसके लिए आप छोटे छोटे किस्से कहानियों की मदद ले सकते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं कि बचपन से ही बच्चों को लाइब्रेरी विजिट करवाते रहें। जहां पढ़ाई का माहौल हो तो आगे चलकर भी उनमें किताबों के प्रति ललक बनी रहेगी और लाइब्रेरी से बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती। और बच्चों को अलग अलग जगहों की लाइब्रेरी घुमाने लेकर जाएं या फिर उन्हें बुक स्टोर्स पर ले जाकर बुक्स दिखा सकते हैं और अलग अलग किताबों को लेकर उनसे चर्चा कर सकते हैं। बच्चे छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाते हैं। जब भी आपका बच्चा पढ़ाई करने बैठे तो उसे शाबाशी जरूर दें, उसमें रीडिंग अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें और साथ ही इससे बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और वह आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा और कहीं दूर तक जा सकता है। आपका बच्चा कुछ मुकाम हासिल कर सकता है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना दूसरा आदमी फिल्म से। दोस्तों, सारी चीजों की बातें हमने कर ली घर आंगन कार्यक्रम में, और अगर खाने पीने की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा और हल्का रखने के लिए लोग तरह तरह की चीजें खाते हैं। ऐसे में सत्तू एक सुपर फूड की तरह काम करता है। ये न सिर्फ ठंडक देता है बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है। सत्तू से बनी चटनी स्वाद में जबरदस्त होती है और इसे रोटी, पराठा या चावल के साथ आसानी से खाया जा सकता है। अगर आप भी कुछ हेल्दी और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो सत्तू की चटनी जरूर बनाएं। तो चलिए जानते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक कटोरी में 3 या 4 चम्मच सत्तू लें। इसमें बारीक कटा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डालें। अब इसमें नमक, नींबू का रस और गर्म करके सरसों का तेल डालें। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करें। ध्यान रखें कि चटनी ज्यादा पतली ना हो, हल्की गाढ़ी रखें। आखिर में ऊपर से हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें और आपकी स्वादिष्ट और ठंडी ठंडी सत्तू की चटनी तैयार है। आप भी खाएं और अपने अपनों

ये गीत आप सुन रहे हैं आए दिन बहार की फिल्म से और आवाज है लता मंगेशकर की। इसी गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं अगली मुलाकात तक। अपने दोस्त अमित कमल को यहीं पर दीजिए इजाजत और सुनते रहिए FM गोल्ड।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी

0: midwives and lady health visitors serving across central and state governments, union territories and voluntary organizations. International Nurses Day is being celebrated today, marking the birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. The theme this year is Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.3% lower in afternoon trade today. The Sensex plunged 1,041 points to 74,975, while the Nifty shed 297 points to 23,519 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और आइए अब प्रस्तुत है लाइव रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी दोस्त और इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, ये घड़ी है हमारे और आपके पसंदीदा लाइव रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज का हमारा खास सफर समर्पित है बॉलीवुड के एक ऐसी फिल्म को जिसमें है कॉमेडी, रोमांस, मस्ती, एक्शन और फैमिली एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी 1982 की सुपरहिट फिल्म की, जिसमें नजर आए थे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन डबल रोल में, और उनके साथ खूबसूरत अभिनेत्री का किरदार निभाया था हेमा मालिनी जी ने। तो रहना है तो गेस्ट तो करके आपको कुछ तो कहना है, जल्दी से मेल करके मैसेज करें, और जो भी हमें सबसे पहले मैसेज करके जवाब देगा वो हमारे इस कार्यक्रम का होगा फेवरेट श्रोता। हमारा ईमेल आईडी ip.radio.delhi@gmail.com। तो हिंट तो हमने दे ही दिया है, और यकीनन हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं ये फिल्मी सफर इस खूबसूरत नगमे के साथ, सुनते हैं, मजे लेते हैं, और इंतजार करूंगी मैं आपके सबसे पहले भेजने वाले श्रोता के संदेश का।

गाना किस फिल्म का था ये तो आप सभी को पता चल गया होगा और हमारे पास जवाब भी बेहद सारे आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज का। फिल्म सत्ते पे सत्ता, जी हाँ बिल्कुल सही। और डीबी राणा जी ने सबसे पहले हमें जवाब दिया है, नेहरू विहार दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मैसेज देने के लिए। लेकिन आज के हमारे फेवरेट श्रोता जी, बता ही दिया हमने नाम उनका। और वाह क्या कमाल का गीत है ना दोस्तों, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। आज भी जब ये गाना बजता है तो दिल अपने आप पुराने दिनों की गलियों में घूमने लगता है। इस गाने की खास बात यह थी कि इसे फिल्म के सातों भाइयों की दोस्ती और जिंदगी के अलग अंदाज को दिखाने के लिए शूट किया गया था। और क्या आप जानते हैं, इस फिल्म की कहानी हॉलीवुड फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स से प्रेरित थी, लेकिन बॉलीवुड अंदाज में इसे इतना मजेदार बनाया गया कि ये अपने समय की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। अब जरा सोचिए, सात शरारती भाई और उनकी जिंदगी में एक आती है समझदार लड़की यानी हेमा मालिनी जी। फिल्म में उनका किरदार पूरी कहानी को खूबसूरती से बदल देता है। और अब वक्त है अगले गाने का जो प्यार और मासूमियत से भरा है। और हमारे पास मैसेज आया नेहरू चौक मैडम, सुरेश जाधव, अनीरा जाधव, सोनल प्रसाद और भी बहुत सारे मैसेज हैं। पिपरिया से कमलकांत, दीपा, रिमझिम और मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव और फिर हमारे पास अजीत भावस्कर का भी आया है मैसेज। और बिट्टू घने एक फिल्म से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुरेश, पूनम, गंगे, इसी तरीके से हमें बहुत सारे भूषण खेरा जी की फैमिली, उन पूरे परिवार से हमें मैसेज आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा नगमा।

हाँ दोस्तों, दिलबर मेरे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गीत आज भी रोमांटिक प्लेलिस्ट की शान बना देता है। कहते हैं इस गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि दर्शकों की इस जोड़े को खूब पसंद करा था। और दोस्तों, सत्ते पे सत्ता सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं, बल्कि इसमें फैमिली बॉन्डिंग, भाईचारा, प्यार का खूबसूरत संदेश भी था। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक सीधा साधा भाई और एक खतरनाक विलेन दोनों किरदार बखूबी निभाए थे, और यही डबल रोल फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बना। अब माहौल का थोड़ा सा और मस्ती भरा बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का, इसी तरह से प्यार बरसाए रखिएगा। कैसा प्रोग्राम लगता है इसी से हमें पता चलता है जब आपके मैसेज आते हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनान, अविराल, इन्होंने हमें मैसेज किया है। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन जी का मैसेज आया है हमारे पास, भूषण खेरा जी का मैसेज आया है हमारे पास, और बिट्टू गंगनेजा ने हमें जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश पूनम गंगनेजा जी ने मैसेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए। और अब सुनते हैं हमारा ये अगला नगमा, बहुत ही खूबसूरत। सच में ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी ऐसे ही बतानी चाहिए।

0: जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम ये जो है एक ही फिल्म से यस और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर और हम मस्ती भरे सारे गाने और फिल्म को फिल्म के दिलचस्प किस्सों के साथ लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले एक सुनते हैं संदेश।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट

0: समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो हम बात कर रहे हैं सत्य पे सत्ता फिल्म की, और आज देखिए दोस्तों, वाह कितना अच्छा दोस्त सुन, अभी हमने गाना सुना ना, जिंदगी मिलके बिताएंगे, तो हम सब, ये गाना ना बहुत ही खूबसूरत है, और सच में जिंदगी बहुत छोटी सी है ना, तो जिंदगी हमेशा मिलके बितानी चाहिए। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि दोस्ती और भाईचारे का एक एंथम बन चुका है। आज भी कई दोस्त अपनी यादों में इस गीत को जरूर शामिल करते हैं। इस फिल्म के सातों भाइयों के नाम भी बड़े दिलचस्प थे, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यानी हफ्ते के सात दिनों पर आधारित सात किरदार। और दोस्तों कहते हैं कि जो फिल्म के सेट पर ना खूब मस्ती होती थी, कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान सभी कलाकार सचमुच एक परिवार की तरह रहने लगे थे। और सात भाइयों की कहानी, जो अनाथ थे, एक दूरदराज फार्म हाउस में रहते थे, अनपढ़ और असभ्य थे। बड़ा भाई रवि जो है बाकी छह भाइयों को पालन पोषण करता, और रवि को इंदु यानी हेमामालिनी से प्यार हो जाता और वो शादी कर लेते। इंदु घर में आती है तो सब जंगली भाइयों को ना सभ्य बनाने की बहुत कोशिश करती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब रवि के हम शक्ल बाबू खूंखार विलन यानी की एंट्री होती है, और एक साजिश के तहत दोनों सभी भाइयों की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब जरा रोमांस और शरारत का तड़का लगाया जाए, तो तैयार हो जाइए अगले खूबसूरत गीत के लिए।

0: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या बात है ना दोस्तों, इस गाने की एनर्जी आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है ना। आर डी बर्मन साहब के संगीत की एक सही यही खासियत थी कि उनके गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। और हम बता दें कि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं जिसमें कि हमें नेहरू चौक प्रेरणा से सुरेश अनीता जागव सोनल और मैसेज किया है, और उसी तरीके से हमें डोल राणा जी ने किया था, दर्शन गौड़ जी ने हमें मैसेज किया है, और उसी में अजीत भावस्कर और सुदर्शन मुखी जी ने मैसेज किया है, धर्मेंद्र छिप्पा जी ने मैसेज किया है हमें राजस्थान से, धर्मेंद्र कपिल पूजा भोपालगढ़, और संजय साहू पोटियाला से हमें मैसेज कर रहे हैं। पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज करने के लिए। हमें सुनील पाठक जी ने मैसेज किया है हमें, और इसी तरह से देव शंकर तामोरिया जी ने मैसेज किया है, मांगे राम जी ने मैसेज किया है हमें, और इसे उन्होंने हिमानी शुभम यश ऋतु सभी ने हमें मैसेज किया है। लालगिरी से हमें गोस्वामी जी ने मैसेज किया है, और आर कुमार जी ने मैसेज किया हमें मिंटू पंजाब से, बंडिंग खेड़ा और पिंकी लवली आरती अरोड़ा, और लालगिरी जी ने हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने हमें मैसेज किया, एंजल सोनू पप्पी हरजिंदर भाटिया जी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हरजिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी पसंद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम को। और सुनते हैं जाते जाते ये वाला गीत, क्योंकि अब समय हमारा हो गया है, हमें अलविदा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस खूबसूरत सफर में जाते जाते सुनते हैं ये वाला गीत। तो दोस्तों आज के इस खूबसूरत सफर यहीं समाप्त करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आर डी बर्मन साहब के संगीत और ये सब फिल्म के जो सुनहरी यादें और दिल को छू जाने वाले गीत मैंने प्ले किए थे वो बहुत अच्छे लगे होंगे आपको। आपकी दोस्त रैना तंवर आपसे लेती है इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई फिल्म गानों और जड़ी कुछ जुड़ी यादों के साथ। जाते जाते इतना ही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि मई के संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का भागीदार बनके एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाएं, क्योंकि ऑयल और पेट्रोल भी बहुत महंगा है भाई, पैदल चले जितना जा हो सकता। तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट दे और आपके दिल को दे जो सुकून वो काम जरूर करे। सुनते रहिए आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे कार्यक्रम के साथ।

नाम नहीं ले पाई, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। और नरेंद्र सूथक जी का भी मैसेज हमें आया है, और जाते जाते मैं नाम बता देती हूँ, हरजिंदर सिंह जी का भी आया है। बहुत सारे मैसेज आए हैं जिनको मैं ले नहीं पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सारे ही हमारे बहुत ही खास श्रोता हैं, इसी तरह से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोहन जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही देर में हम सुनेंगे पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश हिंदी में समाचार। तो जुड़े रहिए हमारे इस आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पेपर लीक होण दे इल्जामां कारण नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच दे हुकम दित्ते गए। भारतीय जनता पार्टी दे सीनियर नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने अज लगातार दूजे कार्यकाल लई असाम दे मुख मंत्री वजों सहु चुकी। अज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों नूं साल 2026 लई राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड प्रदान किए। सीबीआई वालों लखां रुपए के कथित रिश्वतखोरी मामले में बीती देर रात पंजाब च मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर से छापेमारी। आईपीएल क्रिकेट में अज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद में होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सिक्ख्या विच दाखले लई इस महीने की 3 तरीक नूं होई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच एनटीए ने दस्सिया है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित विच अते राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली के भरोसे नूं मानता देंदे होए लिता गया है। एजेंसी ने भी कहा कि सरकार ने पेपर लीक के इल्जामों की व्यापक जांच लई मामले नूं केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई नूं भेजन का फैसला किया है। एजेंसी ने भी कहा कि ब्यूरो नूं पूरा सहयोग देगी अते जांच लई लोड़ींदी सारी समगरी रिकॉर्ड ते सहायता प्रदान करेगी। एनटीए ने कहा कि फैसला केंद्रीय एजेंसियां दे नाल नाल एनटीए वल्लों जांच दे नतीजियां दा मुलंकण करन तों बाद लिया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा लई नवी तरीक वखरे तौर ते नोटिफाई कीती जाएगी। रजिस्ट्रेशन दे वेरवे, उम्मीदवारां दी जानकारी अते मई 2026 लई चुणिया गया परीक्षा केंद्र बदलिया नहीं जाएगा ते दुबारा परीक्षा लई वरत्या जाएगा। एजेंसी ने भी कहा है कि दोबारा परीक्षा लई मुड़ रजिस्टर करने की कोई लोड़ नहीं होगी ते कोई वादू परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने अज लगातार दूजे कार्यकाल लई असाम के मुख्यमंत्री वजों सहु चुकी। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानबारा विच वैटनरी कॉलेज के मैदान विच कराए गए समारोह विच डॉक्टर शर्मा नूं अहुदे ते सरकारी भेद गुप्त रखण की सहु चुकाई। डॉक्टर शर्मा के नाल चार विधायकों ने भी मंत्री वजों सहु चुकी। उन्हां विच भाजपा तो रामेश्वर तेली ते जनता नियोग, असाम गण परिषद तो अतुल बोरा ते बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट तो चरण बोरा शामिल सन। इस समारोह विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री ते भाजपा शासित राज्यां दे मुख्यमंत्री मौजूद सन। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ एनडीए 126 मैंबरी विधानसभा विच 102 सीटां प्राप्त करके असाम विधानसभा विच लगातार तीजी बार सत्ता विच आया। भारतीय जनता पार्टी 82 सीटां नाल सब तो वड्डी पार्टी वजों उभरी जदों कि इसके सहयोगी असम गण परिषद अते बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटां जितियां। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ के कतल की जांच अपने हाथों में ले ली है। एजेंसी ने राज पुलिस की सिफारिश तो बाद अज अधिकारिक तौर पर मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी हेठ एक विदेश जांच टीम बनाई जाएगी। राज पुलिस एजेंसी को केस डायरी सौंपने की तैयारी कर रही है। सीबीआई की टीम अज अपराध स्थान का मुआयना करने के लिए मातग्राम पुलिस स्टेशन का दौरा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवे चुने गए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई हेठ राज कैबिनेट की पहली मीटिंग में लिए गए फैसलों की शलाघा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की भलाई सब तो वड्डी तरजीह है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि डबल इंजन सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनाओं तक निर्विघन पहुंच

0: ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਉਸਾਵਾ ਕਾਰਨ ਨੀਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ ਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 15 ਨਰਸਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗਲ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। CBI ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। जनाब हेमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्जाम के सबब मंसूख कर दिया गया है। CBI से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है। CBI ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा है। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। BJP के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा ने आज लगातार दूसरी बार आसाम के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। ये तकरीब गुवाहाटी के खानापाड़ा इलाके में वेटरनियरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद हुई। डॉक्टर सरमा के साथ 4 अरकान असेंबली को भी काबीना वजीरों की हैसियत से हलफ दिलाया गया। इनमें BJP के रामेश्वर तेली और अजंता नेओग, आसाम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बहुत से मरकजी उजरा और NDA की सरकार वाली रियासतों के उजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। इसके साथ ही डॉक्टर सरमा आसाम में ऐसे पहले गैर कांग्रेसी रहनुमा बन गए हैं जिन्होंने वजीर आला का ओहदा लगातार दूसरी बार संभाला है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA इस रियासत में लगातार तीसरी बार इख्तदार में आया है। उसने 126 रुकनीय आसाम कानून साज असेंबली में 102 सीटें हासिल की थीं। भारतीय जनता पार्टी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टियों आसाम गण परिषद AGP और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF को 10-10 सीटें हासिल हुई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम जुमे को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से तवानाई से मुतालिक इश्तराक और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम इसी रोज नीदरलैंड्स में शाह विलियम अलेक्जेंडर, मलिका मैक्सिमा और वजीर आजम रोब जेटेन से मुलाकात करेंगे। स्वीडन में जनाब मोदी वजीर आजम उल्फ क्रिस्टेरसोन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ओंडेर लेन के साथ सनत से मुतालिक यूरोपियन राउंड टेबल से खिताब करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां वो तीसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वजीर आजम जोनास गेयर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और सदर सर्जियो मेत्रेला और वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम के आइंदा दौरे से हाल ही में किए गए भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती समझौते के तनाजुर में यूरोप के साथ मुख्तलिफ शोबों, खासतौर से तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में भारत की साझेदारी मजीद मजबूत होगी। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 का इम्तिहान मंसूख करने का फैसला किया है, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में दाखिले के लिए इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया कि ये फैसला तलबा के मफाद में और उस ट्रस्ट को तस्लीम करते हुए किया गया है जिस पर

निर्माण का निजाम मुनहसिर है। एजेंसी ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इस मामले को तफ्तीश के मरकजी ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है ताकि पेपर लीक के इल्जाम की भरपूर तरीके से जांच की जा सके। एजेंसी ने कहा कि वो सीबीआई को अपना पूरा ताउन देगी और तफ्तीश के लिए तमाम तर मवाद, रिकॉर्ड्स और मदद फराहम करेगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ने यह फैसला मरकजी एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फराहम की गई तफ्तीशी मालूमात की बुनियाद पर किया गया। एनटीए ने कहा कि ये इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा जिसके लिए अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मई 2026 साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और इम्तिहान के लिए मुंतखब मराकज में कोई तब्दीली नहीं की गई और इन्हें दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान में इस्तेमाल किया जाएगा। एजेंसी ने बताया कि नए सिरे से किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और न ही इम्तिहान की कोई इजाफी फीस ली जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के जाती मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की छानबीन अपने हाथ में ले ली है। रियासती पुलिस की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने आज बाजाब्ता तौर पर तहकीकात का काम अपने हाथ में ले लिया है। एक बयान में सीबीआई ने कहा है कि उसके कोलकाता जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी में खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जाएगी। इस दौरान सीबीआई की एक टीम के आज मध्यमग्राम थाने का दौरा करने और उस जगह का मुआयना करने का इम्कान है जहां पर कत्ल का ये वाकया पेश आया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के नवमुंतखब वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के जेर सदारत पहली काबीना मीटिंग के फैसलों की सताइश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल के लोगों की फलाह बहबूद आला तरीन तरजीह है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि रियासत के लोगों को हिफ्जान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत तक का रसाई हासिल होगी जो आला मेयार के काबिल रसाई हिफ्जान सेहत को यकीनी बनाती है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि डबल इंजन की सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि अहम मरकजी स्कीमों के फायदे लोगों तक बिला रुकावट पहुंचें। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन इस माह की 18 तारीख को ओडिशा का एक रोजा दौरा करेंगे। वो आला सतह के तंजीमी जायजे के लिए ये दौरा करेंगे जिसका मकसद पार्टी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना है। इस दौरे का मकसद ये भी है कि बीजेपी को पिछले साल असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी मिलने के बाद समाज की निचली सतह पर बीजेपी को मजीद मकबूल बनाया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में 15 नर्सिंग पेशावरों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड नर्सिंग के मैदान में इनके गैर मामूली ताउन पर दिया गया है। ये अवार्ड मरकजी और रियासती हुकूमतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और रजाकार तंजीमों से वाबस्ता रजिस्टर्ड नर्सेज, दवाइयों, मददगार और नर्स मिडवाइज और लेडी हेल्थ विजिटर को दिए जाते हैं। हर एक अवार्ड मेरिट के एक सर्टिफिकेट, 1 लाख रुपए नकद रकम और इन सेहत कारकुनों के जरिए फराहम की गई बेशबहा खिदमात के तहत कौमी के तशक्कुर का इजहार करने वाले एक मेडल पर मुश्तमिल है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा, सेहत के उजराए ममलिकत प्रताप राव जाधव और सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगल की उम्र पैदाइश पर आज नर्सों का बैनुल अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल, बाइख्तियार नर्सें जिंदगी बचाती हैं। यह दिन मरीजों की देखभाल, कम्युनिटी हेल्थ और इक्तसादी तरक्की में नर्सों के रोल को तस्लीम करता है। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, इबादतगाहों और बस स्टैंड के नजदीक वाकई शराब की 717 दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया है। ये दुकानें तमिलनाडु रियासती मार्केटिंग कारपोरेशन के तहत चलाई जाती हैं। रियासती सरकार ने एक बयान में कहा कि इस कारपोरेशन के तहत शराब की 4675 खुर्दा दुकानें चलाई जाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। जनाब हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्जाम के सबब मनसूख कर दिया गया है। सीबीआई से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है।

सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: ডক্টৰ শর্মা কে সাথ 4 বিধায়কো নে ভি মন্ত্রীপদ কি শপথ লি। ইনমে ভাজপা সে রামেশ্বৰ তেলী আৰু অজন্তা নিয়োগ, অসম গণ পৰিষদ সে অতুল বোৰা আৰু বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট সে চৰণ বোৰো শামিল হে। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है।

0: निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन

0: कर दिया है।
1: 54,000 मेट्रिक टन।
2: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओ सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास हो
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है
1: जी।
2: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है।

0: कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
0: जी,
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है। ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
1: जी,
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी,
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी,
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है। और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से, चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आओ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया। कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।

0: मुझे कुछ करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखू। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी जा,
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं
1: जी?
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप।

0: ऊपर गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
2: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, तीन गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना, गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक
3: में खेले भरपूर।
2: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
6: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
6: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
8: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
6: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
8: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
6: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
8: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और

0: खनिज संपदाओं की भरमार है।
1: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
0: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
0: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
1: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
0: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को, यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
1: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ, तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
0: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
1: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
0: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
1: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
0: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
1: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
0: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है

0: पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

दक्षिण सपयंते सपोंसर प्रोग्राम चिंगने ने पिंग एनसीईआरटी मीडिया में विकास दिव आकाशवाणी कर गिलेन वक्स वो फितो गतो सुम चिंदु का सता आचास आकाशवाणी दिलेना प्रोग्राम उर्दू सर्विस रिले विद रिले ला डाउन पास आयत

सर्विस है। सपहर के 3 बजे है हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

अलर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर या डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की शुरुआत। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

लोकसभा के स्पीकर ने कल पार्लियामेंट हाउस में श्रीलंका की खवातीन अराकेन पार्लियामेंट के साथ बातचीत के दौरान ख्यालात का इजहार किया। श्रीलंका के अराकेन पार्लियामेंट के वफद की क्यादत श्रीलंका की खवातीन और बच्चों के उमूर की वजीर सिरोजा सावित्री पॉल राज ने की। बीजेपी के सीनियर

नाज़मी आनंद बख्शी का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म है महबूब की।

0: साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है अदबी प्रोग्राम। सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। आज के प्रोग्राम में सामीन हम आपको सुनाएंगे मोहतरमा लाला कमर एजाज से उनका अफसाना नेमत खाना। कलामी शायद के तहत अपना कलाम पेश करेंगे जनाब नवीद अंजुम, और इसके अलावा एक गजल भी आपकी समातों की नजर की जाएगी। इब्तदा करते हैं कलाम शायर से। सामीन, शायरी न सिर्फ हमारी अदबी तस्कीन का विरसा है या अदबी तस्कीन का जरिया है, बल्कि ये हमें जीहोश भी बनाती है। शायरी में न सिर्फ दर्द जाना या गमे जाना होता है, बल्कि इसमें दर्द जहां और गमे जहां भी साफ तौर पर नजर आता है। कामयाब शायरी की पहचान यही है कि वह हर दौर में अपनी अलग मानवीयत रखती है। कहीं भी किसी भी दौर में उस शेर को पढ़ा जाए तो वह अपनी मानवीयत ढूंढ लेता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि हर अहद की लफ्जियात अलग होती हैं, लेकिन शेरी लफ्जियात हमेशा एक सी रहती हैं, यानी उनकी मानवीयत हमेशा बरकरार रहती है। आज के प्रोग्राम के आगाज में आइए सामीन सुनते हैं जनाब नवीद अंजुम से उनका कलाम।
1: एक गजल मुलाजा फरमाए, उदासी शब की तो रंजे सहर को देखते हैं, गमे फिराक में दीवारों दर को देखते हैं। उजाला मांग के लाता है रोज शम्स से वो, हम इस्तराब में अक्सर अमर को देखते हैं। हजार चेहरे छुपे हैं हरेक चेहरे में, बड़े ही ध्यान से हरेक बशर को देखते हैं। कुछ इस अदा से नजर फेर ली थी उसने कभी, कुछ इस अदा से नजर फेर ली थी उसने कभी, जहां भी जाएं उसी की नजर को देखते हैं। खड़े हुए हैं जहां एक सफ में हैवा सब, उसी कतार में हम नामवर को देखते हैं। एक और गजल है, आंख लग जाए तो मंजर ना कहीं खो जाए, मेरी नजरों से वो पैकर न कहीं खो जाए। सिर्फ इस वास्ते है भीड़ से वहशत मुझको, मेरी आवाज ही तब करना कहीं खो जाए। सोचता हूं तेरा चेहरा न हो औरों जैसा, ये मेरी आंखों में बसकर ना कहीं खो जाए। इतना जागा हूं कि डर लगने लगा है मुझको, मेरी आंखों से ही बिस्तर न कहीं खो जाए। एक नज़्म है जिसका उन्वान है अफसुर्दा। रात अफसुर्दा है, तारीख है, बेसामा है, हसरतो यासो उमंगे दिले वहशी का मजार। यूं तो खामोशी में बुन रखे हैं ताने बाने, इसकी आगोश में पिन्हा है ख्यालों का जहां। चंद बेसूद तमन्नाओं के मुभम खाके, आरज़ुओं के धुंधलके में कई ख्वाब यहां। कितनी मोहम उम्मीदों के हैं बुझते से चराग, अब से पहले तो समा और ही कुछ था, लेकिन रात के वलवले थे, जोश और तरब था कुछ और। आग ही आई दबे पांव मगर रात गए, ज़हन पे जितनी भी तस्वीरें थी लर्जा सी हुई। आलमे होशो खरद हिरसो हवस का अफसों, एक शब खून

आश किए राज कई दर पर्दा, राज कीती के जहां वालों के दीवानों के, कहीं इस्मत लूटी दुनिया में कहीं अदल मिटा, और फिर रात ने डाली जो स्याही मुझ पर, अपने इंसान भी होने का भरम टूट गया। तुमने मुझसे ये कहा है कि मैं अफसुरदा हूं, मैं भी अफसुरदा हूं, ये शहर भी अफसुरदा है। एक गजल है, सभी रिश्ते सरे बाजार आ जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। सभी रिश्ते सरे बाजार आ जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। ताल्लुक सारे पुरसरार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। ताल्लुक सारे पुरसरार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। वो जिनसे था कभी एक गहरा नाता एक जमाने से, वो जिनसे था कभी एक गहरा नाता एक जमाने से, वो सारे लोग ही बेजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। वो सारे लोग ही बेजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। लुटाते फिरते थे जो जानो दिल सब तेरी राहों में, लुटाते फिरते थे जो जानो दिल सब तेरी राहों में, वो दिल आजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। वो दिल आजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। गवा दी उम्र सारी जिनको पाने के लिए तुमने, गवा दी उम्र सारी जिनको पाने के लिए तुमने, वो सर बेकार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। वो सर बेकार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। बड़ा करने में जिनको तुमने अपना खो दिया सब कुछ, बड़ा करने में जिनको तुमने अपना खो दिया सब कुछ, वो बच्चे बरसरे पैकार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। वो बच्चे बरसरे पैकार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। बहुत मायूस थे फूलों के मुरझाने पे तुम लोगो, बहुत मायूस थे फूलों के मुरझाने पे तुम लोगो, ये सब गुलजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। ये सब गुलजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। सभी रिश्ते सरे बाजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। ताल्लुक सारे पुरसरार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। एक दूसरी गजल मुलाजा फरमाए कि जब से तेरा ख्याल रहता है, छोटे बहर की गजल है, जब से तेरा ख्याल रहता है एक मसलसल मलाल रहता है, जब से तेरा ख्याल रहता है एक मसलसल मलाल रहता है, जाने क्या हो गया उसे लोगो, जाने क्या हो गया उसे लोगो, क्यों वो हर पल निढाल रहता है, क्यों वो हर पल निढाल रहता है। हिजर के दर्द में कहीं शामिल, हिजर के दर्द में कहीं शामिल, फिक्रे रंजे विसाल रहता है, फिक्रे रंजे विसाल रहता है। तुमने दे तो दिए जवाब सभी, तुमने दे तो दिए जवाब सभी, हाँ मगर एक सवाल रहता है, हाँ मगर एक सवाल रहता है। वो समंदर हूँ जिसमें रोजो शब, वो समंदर हूँ जिसमें रोजो शब, हर घड़ी एक उबाल रहता है, जब से तेरा ख्याल रहता है एक मुसलसल मलाल रहता है। एक और गजल, आखिरी गजल मुलाजा फरमाए, ये जो टूटे से हैं अल्फाज सभी मेरे हैं, ये जो टूटे से हैं अल्फाज सभी मेरे हैं, जितने बिखरे हैं यहाँ साज सभी मेरे हैं, ये जो टूटे से हैं अल्फाज सभी मेरे हैं, जितने बिखरे हैं यहाँ साज सभी मेरे हैं। आज के दौरे जबाबंदी में मुझको अब तक, आज के दौरे जबाबंदी में मुझको अब तक, दे रहे हैं यहाँ आवाज सभी मेरे हैं, दे रहे हैं यहाँ आवाज सभी मेरे हैं। एक जमाने से कलेजे से दबा रखा है, एक जमाने से कलेजे से दबा रखा है, दिल में पिन्हा है जो सब राज सभी मेरे हैं, एक जमाने से कलेजे से दबा रखा है, दिल में पिन्हा है जो सब राज सभी मेरे हैं। नगमा जन जो थे यहाँ आज वो हैं जान बलब, नगमा जन जो थे यहाँ

0: साज सभी मेरे हैं, जो भी हैं गीत के दमसाज सभी मेरे हैं। हाँ इसी तरह से एक उम्र गुजारी है नवीद, हाँ इसी तरह से एक उम्र गुजारी है नवीद। चाहे जैसे भी हूँ अंदाज सभी मेरे हैं, चाहे जैसे भी हूँ अंदाज सभी मेरे हैं। ये जो टूटे से हैं अल्फाज सभी मेरे हैं, जितने बिखरे हैं यहाँ साज सभी मेरे हैं।
1: कलामी शायरी के तहत अभी आप जनाब नवीद अंजुम से उनका कलाम सुन रहे थे। उम्मीद है कि कुछ न कुछ कलाम जरूर आपको पसंद आया होगा। अब बात करते हैं उर्दू अदब की एक और मकबूले आम सिंफ अफसाने की। गो के अफसाना अंग्रेजी अदब से उर्दू अदब में आया, लेकिन उर्दू ने इसका दिल खोलकर इस्तकबाल किया और बाहें फैलाकर इसे गले से लगाया। इस तरह अफसाना उर्दू में एक मकबूले आम सिंफ बन गया और आज अफसाना उर्दू की मकबूल सिंफ शुमार किया जाता है। अफसाना निगार आपके आसपास की कहानी को उठाता है, आपके आसपास के किरदारों को मुतारिफ कराता है। वो किरदार जिन्हें हम बिल्कुल फरामोश कर देते हैं या जो हमारे आसपास होते हैं, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अफसाना निगार उन किरदारों की बात करता है और हमें एहसास दिलाता है कि हम अपनी जिंदगी किस जाविये से जी रहे हैं। तो आइए सामईन, अब सुनते हैं मोहतरमा निदाला कमर एजाज से उनका ये अफसाना नेमत खाना।
2: अफसाने का उन्वान है नेमत खाना। पुराना होने के बावजूद नेमत खाना कुछ अरसे पहले तक नया होने का गुमान देता था, और क्यों ना देता। फुर्सत के औकात में अम्मा रगड़ रगड़ कर उसको चमकाती और फिर देर तक उसे निहारती रहती। ये उनकी माँ की आखिरी निशानी की शक्ल में उनके पास था, मगर कुछ दिनों से वक्त की छाप उस पर साफ नजर आने लगी थी। वो बेचारगी से उसे देखकर आहें भरा करती। कितना लंबा साथ था, माँ बाप जुदा हो गए, मगर नेमत खाना उनके पास था। दरवाजा खोलते वक्त आजकल उसमें चुरमुराहट सी होने लगी थी, उनका दिल बैठ जाता। पहली बार आवाज सुनकर अम्मा ने देर तक उसके कब्जों पर तेल रगड़ा था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। काफी कमजोर हो गए थे वो, जोर से दबाने पर शायद निकल ही पड़ते। कारीगर को दिखाया, मगर उसने बेहद रुखाई से कहा था कि उसकी टीम गल चुकी है और हथौड़ी की एक चोट भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सबूत के तौर पर उसने अम्मा की ना ना के बावजूद एक चोट कर ही दी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका और टीम अंदर को धस गई। उन्होंने घूर कर जब कारीगर को देखा तो वो बड़बड़ाते हुए वापस चला गया। अम्मा दुपट्टे के कोने से देर तक उसे सहलाती रही। बहू लाउंज में बैठी अखबार पढ़ रही थी। अम्मा ने उन्हें मुतवज्जो करने की बहुत कोशिश की, मगर वो लापरवाह बनी बैठी रही। बेहिसी की भी हद होती है, अम्मा ने आंखें रगड़ी। वो वक्त नजरों के सामने आ गया जब अब्बा ने खुद दुकान पर बैठ कर उसको बनवाया था। टीन की चादर इतनी मजबूत थी कि कुछ दिन पहले तक वैसी ही चमक बरकरार थी। खास ऑर्डर देकर बनवाया गया था और चार दिन की मेहनत के बाद वो तैयार हो सका था। आम तौर पर मिलने वाले नेमत खानों से अलग उसमें एक ऊपर का खाना था, जिसका दरवाजा टीन का था। नीचे के खानों में जाली थी ताकि हवा अंदर जा सके और खाने पीने की चीजें खराब ना हो। उस जमाने में अलग से बावर्ची खाने का रिवाज कम होता था। कुछ घरों में अलग से था भी तो दरवाजा नदारद। इंसानों से ज्यादा बिल्ली चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़ों से सामान की हिफाजत के लिए नेमत खाना हुआ करता था और जहेज में बतौर खास दिया जाता। मगर इस नए घर में बावर्ची खाना भी था, उसमें दरवाजा भी लगा था और सामान रखने के लिए अलमारियां भी बनाई गई थी। उनके जमाने में तो इन सब का तस्वीर भी नहीं था। हाँ, फैला हुआ बड़ा सा घर, बीच में आंगन, चारों तरफ दालान, जिसका एक हिस्सा बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। लकड़ी और बुरादे के चूल्हों से लेकर गैस के चूल्हे का दौर उनके सामने गुजरा था, मगर ऐसा बावर्ची खाना। शादी से पहले किसी ने बताया था कि बहू ने घर सजाने यानी इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया है। उनको ये बात समझ में नहीं आई थी। सलीका और हुनर तो लड़कियों को

द्वारा स्कूलों में सफाई सुथराई और झाड़ू बुहारू का ढंग सिखाया जाएगा। कह तो वो नहीं सकी थी मगर सोचा जरूर था। शौहर के गुजर जाने के बाद अकेलेपन से उकता कर उन्होंने बेटे के पास जाकर रहना मंजूर किया था, मगर उनकी बस यही शर्त थी कि नेमत खाना उनके साथ ही जाएगा। राशिद के एक जानने वाले ट्रांसपोर्टर थे, उन्होंने उसे बाहिफाजत पहुंचाने का जिम्मा अपने सर ले लिया और यूं नेमत खाना अम्मा के साथ यहाँ आ गया। मगर बहू को उससे अजीब सी चिढ़ थी, उन्हें बावर्ची खाने में उसे रखना कतई गवारा नहीं था, किचन का सारा लुक खराब हो जाएगा। हिना ने शौहर से कहा, बावर्ची खाने की खूबसूरती नेमत खाने के होने या ना होने पर मुंहसिर थी। राशिद को मुदाखलत करना पड़ा और वो अम्मा को ये समझाने में कामयाब हो गए कि नेमत खाना उनके कमरे में उनकी नजरों के सामने रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये नाना जान की वाहिद निशानी है जो उन्होंने नानी जान के लिए बनवाई थी और अब उनके हाथों में है। अम्मा को बेटे पर टूट कर प्यार आया। राशिद ने एक आंख बंद करके मुस्कुराते हुए बीवी की तरफ देखा और सब ठीक है का इशारा किया। हिना खुश हो गई और अपनी मॉड्यूलर किचन को सजाने संवारने में लग गई, जहाँ की हर चीज उनकी पसंद की थी, दीवारों के रंग से लेकर फर्श की टाइल्स तक। पहली बार बेटे के घर में घुसते ही अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आंगन में पत्तों की खड़खड़ाहट की आदि थी। अपनायत का एहसास दिलाती मिट्टी में बसी सोंधी सोंधी खुशबू मुंह को सरसार कर जाती और यहाँ चमचम करता घर और सामान, वो छूने से भी डरती थी। साफ सफाई और सलीका भी किताबों से हासिल होता है, 5 मिनट में ही वो इस बात की कायल हो गई थी। हर नए घर के अपने उसूल और कायदे होते हैं, उसका अंदाजा उन्हें पहले से था और जल्दी उससे वास्ता भी पड़ गया। दूसरे दिन वो वजू करके बाथरूम से निकली तो प्यास का एहसास हुआ। जग खाली था, पानी लेने वो कमरे से बाहर आई। फ्रिज में ठंडा पानी था, नॉर्मल पानी की बोतल पता नहीं कहाँ थी। वो बहू के कमरे तक आई और उनको पुकारा, मगर इससे पहले कि वो अपनी बात कहती हिना बोली, अम्मा गीली चप्पल से फर्श खराब हो जाता है, बाथरूम के बाहर चप्पल रखी है, आप उसे इस्तेमाल किया करें और फिर बाहर निकलकर बदल लें ताकि फर्श खराब ना हो। बात सही थी, फर्श देखते हुए वो कमरे में आ गई और बहुत देर तक दिमाग में ये बैठाने की कोशिश करती रही कि कौन सी चप्पल कहाँ पहनकर जाना है। औरतों की उम्र का बड़ा हिस्सा यही सब समझने और समझाने में सर्फ होता है, मगर आदत तो जाते जाते ही जाती है। शादी करके जब वो ससुराल आई थी तो उनका कमरा छत पर था, वो धपड़ धपड़ सीढ़ियां चढ़ा करती और रोज सास की डांट सुनती, बहू बेटियों को धीरे धीरे सर झुकाकर चलना चाहिए, ये कौन से रंग ढंग निकाले हैं दुल्हन ने। जिंदगी का लंबा अरसा गुजर गया, घुटनों के दर्द से चलना फिरना भी दुश्वार हो गया। सास गुजर गई, होती तो शायद अब भी उनको सुधारने की कोशिश में लगी रहती। अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। अब ये बहू का नया घर और इस घर के नए जाब्ते, पता नहीं कितना वक्त लगेगा इस माहौल को समझने में। जब भी वो बहू से कुछ कहने के लिए जाती, वो मोबाइल कान में लगाए या तो किचन में मसरूफ होती, ड्रेसिंग टेबल के सामने होती या फिर टीवी देख रही होती। आवाज पर उनकी तरफ मुड़ती तो वो जल्दी से अपनी बात कह देती, पता नहीं सुना भी या नहीं, उनको खदशा लाहक हो जाता। मगर वो सुन भी लेती और अमल भी हो जाता। दवाइयां उनके कमरे में होती, चाय के साथ खाने वाला बिस्किट डब्बे में मौजूद होता। नया जमाना है, आपस में बात करने का रिवाज खत्म हो गया है, अब मशीनों से बात होती है, टीवी की सुनो और फोन पर बोलो। वो अपने आप को समझाती रहती और घबराती। आजकल वैसे भी पता नहीं क्या हो गया था, ख्वाब में गुजरे हुए लोग दिखाई देते, कभी माँ बाप तो कभी और दूसरे रिश्तेदार, और अब कई रातों से राशिद के अब्बा का हंसता हुआ चेहरा सामने आ रहा था। दिन भर तबीयत बोझल सी रहती, क्या करें, दिल ज्यादा बेचैन हो जाता तो नेमत खाना खोलकर चीजों को दुरुस्त करने में लग जाती। पुरानी यादें एक एक करके ताजा होती तो दिल पुरसकून हो जाता। उस दिन रात में अचानक सीने में दर्द उठा, बेकाबू हो गया तो राशिद को

0: पानी पिलाया सहलाया, डॉक्टर के पास जाने के लिए वो राजी नहीं हुई। छपकी आई तो लगा राशिद के अब्बा उनको बुला रहे हैं और माजून खाने के लिए कह रहे हैं। पट से उन्होंने आंखें खोल दी और उठने की कोशिश की। राशिद ने बहुत मुश्किल से उन्हें लिटाया, सांस उखड़ने लगी। उंगली से उन्होंने नौमत खाने की तरफ इशारा किया। हिना और राशिद ने कुछ न समझते हुए एक दूसरे को देखा। अम्मा की उंगली नौमत खाने की तरफ इशारा कर रही थी। राशिद जल्दी से उधर आए। नानी हमेशा नेमत खाने में ताला लगाया करती थी। अम्मा ने वो रिवायत बरकरार रखी थी। हिना ने चाबी इधर उधर टटोला मगर बेसुध। राशिद ने ताले को जोर से खींचा तो वो चुरमुराते हुए दोनों कब्जे अलग हो गए और दरवाजा उनके हाथ में आ गया। खुलती बंद होती आंखों से अम्मा ने ये मंजर देखा। एक कमजोर सी आह मुंह से निकली। दरवाजा हाथ में लिए राशिद अम्मा की तरफ मुड़े मगर उनकी रूह जिस्म से आजाद हो चुकी थी।
1: माजी को कुरेदता और मुस्तकबिल के खाके बनाता अफसाना नेमत खाना भी पेश कर रही थी मोहतरमा रिजाला कमर एजाज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आई सामने अब सुनते हैं बेगम अख्तर की आवाज में ये गजल कलाम मिर्जा गालिब का है।

पे नाहीद की हर तान है दीपक, शोला से लपक जाए है आवाज तो देखो। अभी गजल क्या थी, बेगम अख्तर कलाम मिर्जा गालिब का था। तो समय ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक आप जरूर हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है urdu service esg@gmail.com। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान शमी उस्मानी को इजाजत दीजिए। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम के आगाज में समाप्त सुनाइए मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाजों में मुस्तम सवारा फिल्म का नगमा, नगमा निगार का अमर जलालाबादी, मौसीकार सज्जाद।

आप सुन रहे थे हरियाली और आस्था फिल्म का नगमा, मौसीकार थे शंकर जयकिशन। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म है दिल एक मंदिर, नगमा निगार शैलेंद्र, मौसीकार शंकर जयकिशन।

0: से हलफ दिलाया गया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, आसाम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दफा राजनाथ सिंह, बहुत से मरकजी वजरा और एनडीए सरकार वाली रियासतों के उजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। इसके साथ ही डॉक्टर सलमा सामने ऐसे पहले गैर कांग्रेसी रहनुमा बन गए हैं जिन्होंने वजीर आला का ओहदा लगातार दूसरी बार संभाला है। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के जाति मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की छानबीन का काम संभाल लिया है। रियासती पुलिस की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने आज बाजाब्ता तौर पर तहकीकात का काम अपने जिम्मे ले लिया। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में दाखिले के लिए इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया कि यह फैसला तलबा के मफाद में और उस ट्रस्ट को तस्लीम करते हुए किया गया है जिस पर कौमी इम्तिहान का निजाम मुनहसिर है। एजेंसी ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इस मामले को तफ्तीश के मरकजी ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है ताकि पेपर लीक के इल्जाम की भरपूर तरीके से जांच की जा सके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम है। जनाब ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे की ईरान की तजवीज को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद किए जाने के जिम्मे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरत हाल का शिकार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में 15 नर्सिंग पेशावरों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड नर्सिंग के मैदान में इनके गैर मामूली ताउन पर दिया गया है। चीन के हुनान सूबे में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। हंगामी हालात से निमटने वाले मुकामी ब्यूरो के मुताबिक ये आग हेंगयांग सिटी के एनफेंग जिले में लगी। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से जोर देकर कहा है कि वो मगरबी एशिया के बहरान के पेश नजर गैर मुल्की जर मुबादला की बचत के खातिर ईंधन और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिद अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से इर्तका पजीर गहरे तहजीबी, सकाफती और रूहानी ताल्लुकात से जुड़े हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीरों की। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: अभी तक आप हमारी नशरियात आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से समात फरमा रहे थे। मीडियम में 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब है। सामीन अब से लेकर रात 10:30 तक अब आप हमारे नशरियात मौजूदा मीटर के अलावा मीडियम में 1584 किलोहर्ट्ज़, 199.4 मीटर और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्स पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। السلام علیکم میڈیم ٹو گیانگ شجبی نجبی کلو ہرٹس میڈیم سوچنگ ناغب گیانگ شجبی نجبی کلو ہرٹس دنا نیوز اون اے آئی آر ایپسکان اچس آکاش وانی

Tassan Tsapen Tersak Mastut Kingen and Chuping, Mohammed Ali Malis Katanu, Miri Mivika, Diwakashwani, Kargilin, Waspo Pitoret to Soto Hanam Letting Issue, Saksum Sosu, Kasatangachi, Diring Chuchupi, Programmi, Sirpunyan Mazat, Hanam Letting Issue Sagado Nardun, Nominating Issue Sarika, Purgi, Havaran Chuchazin, Redeluxi Hawunyan Mazat, Hana Fetica, Hanam Nersum Chuswaika, Shina Skatan Luri Projuget. आकाशवाणी दिल्ली ने हिंदी अंग्रेजी खबरों के लिए बच्चा सिंह तुस्तु टुगेका टुक नमनट चोगे कला दक्षिण हुरिक नियन मजाद सगेत पनिफिया प्रोग्राम पर चुचा सिंह तुस्तु टुगेका टुक ना तुस्तु दुर्दुनी का ये करगिल है पर चुचा सिंह आकाशवाणी श्रीनगर ना और दी खबर ना तब्सरान रेले बच्चा सिंह और दुन ना मिनट सुन चुस होएगा और दुन नमनट जीप जी का Yurtur Pakminipia program for Chukchasin Sanitus Dergatica, Giat Naminat Jip Chujakrika, Akashwani, Delina, Hindina, Angrezi, Donaldi Havarun, Relevajas in. Shina program Punarian Mazat Urgunam Fetica, Juning Akashwani Karil Kanadin Chuchupi program Nisipo. Miri Mivikadu Akashwani Kargilin, Kasatapurgi Havarunian Mazat.

0: koi skin pe ra ne koi paspa on jinde gen po
1: na shit
0: bre se paspa wa ga do era in mal so se do ga ga ka to marpo so se ya inflammation de sono atas
1: na shit
0: do so se do scrum se ga to ga time ka fisa pa lus na ga to de ya de ga ne ra nipple pe ga ne ra e discharge hone ga ga na kha so so shi ga clear de jo sab chi ho na ga to do so बहुत टाइम से दो लूस लगा तो यार डॉक्टर का तो अलामत चीन यार ब्रेस्ट कैंसर ही तो ब्रेस्ट कैंसर यार इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि किसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है किसको नहीं हो सकता है तो जैसे कि आपने बताया पहले तो एक रिस्क फैक्टर क्या होता है कि इसमें एक तो एज मैटर करता है ना एज जैसे फीमेल्स में 50 प्लस में ज्यादा कॉमन होता है एक एज फैक्टर इंक्रीजिंग एज जैसे आपका एज बढ़ता जाता है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उम्र के हिसाब से एक रिस्क फैक्टर रहता है आपका और इसमें दूसरा रिस्क फैक्टर होता है जैसे ओबेसिटी हो गया जैसे कि मतलब वजन ज्यादा हो गया किसी को वेट ज्यादा है वेट पे कंट्रोल नहीं है तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं रिस्क फैक्टर दूसरा ये हो गया तीसरा होता है कि जिसका ब्रेस्ट फीडिंग कभी किया नहीं हो किसी ने या जिसका जिसने कभी शादी नहीं किया होगा या कोई बच्चा नहीं हो उसमें कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया हो तो उसमें थोड़ा चांसेस ज्यादा रहता है ब्रेस्ट कैंसर के ब्रेस्ट फीडिंग कभी नहीं किया हो तो यही ब्रेस्ट फीडिंग का एक फायदा है कि ये तो कैंसर से बचाता है तो ये एक तीन रिस्क फैक्टर्स हो गया चौथा हो गया जैसे कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते आप लोग कोई रेगुलर अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हो फिजिकल एक्टिविटी आपका नहीं है और डाइट अच्छे से आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो और तीसरी बात यह है कि इसमें जैसे रेडिएशन एक्सपोजर कहीं हो किसी को कोई ब्रेस्ट को कोई रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो एक्सरेस हो गया या कोई दूसरे टाइप का रेडिएशन एक्सपोजर होता है तो उसमें चांसेस बढ़ता है तो हाँ और दूसरा चीज होता है और भी रिस्क फैक्टर्स इसमें है जैसे कि हार्मोनल थेरेपी कोई पेशेंट अगर किसी चीज के लिए या एक उम्र होता है जैसे कि 45 या 50 ईयर्स के बाद एक पोस्ट मेनोपॉजल हम बोलते हैं इसमें आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं इसके बाद हार्मोनल थेरेपी कुछ लेते हैं तो उसके भी हार्मोनल थेरेपी के भी रिस्क होता है कि वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के तो और कुछ हार्मोनल थेरेपी जो बोलते हैं वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो फीमेल्स में ये रिस्क साथ में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर है मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है उनमें भी यही कुछ रिस्क फैक्टर्स है ये रिस्क फैक्टर्स भी है साथ में हम कॉजेस भी इसके बोल सकते हैं जैसे रेडिएशन हो गया यूज ऑफ जैसे स्मोकिंग हो गया अल्कोहल कंजप्शन हो गया जैसे शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं तो वो भी उसमें ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस बढ़ा देते हैं गुस्सा मेल में और फीमेल दोनों में और एक चीज है रेडिएशन एक्सपोजर का हमने बोला एक एक मोस्ट कॉमन चीज होता है जेनेटिक एक इसमें होता है जेनेटिक फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर मतलब जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री अगर हो फैमिली में अगर किसी का ऑलरेडी किसी का ब्रेस्ट कैंसर एक दो नफर को हुआ है पहले किसी जैसे दादी को नानी को या किसी फीमेल को या उसकी कोई पार्टनर को जो से कोई लेडीज है उसकी अगर कोई सिस्टर है उसको अगर कैंसर हुआ फैमिली में तो उसमें थोड़ा जेनेटिक हिस्ट्री में क्या रहता है उसमें भी कुछ 15% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क रहता है तो एक जेनेटिक फैक्टर होता है क्योंकि एक जीन में एक म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से कैंसर हो जाता है ये चीज है रिस्क फैक्टर से उसके कॉजेस ये ब्रेस्ट कैंसर के
2: दसन सब पर एंटर डिलुक्स हगुंग यानी चुटिंग मीडियम भी का दियो आकाशवाणी कर गिरे वक्स पो तो सुतगन हम सुमचु सोगा सो सुख का सता शीना लूरिक फ्रुचुगे मजाक

0: मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध

विश्वविद्यालय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आरबीआई कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: रंगी बिजनेस उन्लास के तंगमिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलेन लोकल इन या फायुली थोकाइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सपिले पीस कप्स मांगमो दरने यंतेस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनिका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंगिन से योत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
4: 8700014242। सुनो ना।
3: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: tangchana chigulik tangcha degana askia pehla chu ngatel durchu ulchu tangchana desana tanglo chu de waja duin mamle nitrogen hamesha volatile volatile jemana chikpo mana te sthachyo se nami mangmuk chana ko lungspeng bahap dane chache chu ge dane ya do men ma chu mana mangmik chana do nyammu yammu song se yoga ardan la thil la song se patak basa yoga chana chang fayda chache men chu chana di phosphorus na potassium duin ki chikpauna yari seng nu jarasim po jarasim jemana rgalbastrin po yong margoshen chu der rgalbastrin po yotna chikpauna khor demo base khere yari laksu sun latang chen chu nispa se rikspor gala yotna yara nga den lushen chu elo al malab yara nga lusu yotna do chang yantas shikayat maba den da bacha yang use base yang lok chak pana kule kule yang de nafa nga ti laksu sun la yong chen chang yantang malab jikspi chang den de chajamen वाजिक चाचामेन चिया जरना दो दो नी दिया और रिक्स पो इन फास्फोरस ना पोटाशियम रिक्स पो इनकी ग्योक्सपा कुल ग्योक्सपा माथो पा कुले कुले अमेने गाती लक्षु सुनला थोप चामेन सु भानके कुले कुले अमेने थोप चामेन सु चाना कोशिश बचा दो ना गाती धंगरे लुट या छकलुट यंते दांग दिरी गाती तूस पेंग जेन दुकी स्ट्रीन विन माना मंगमोता बेतांग या से रिक्स पो छोड़ते तांग दोन ला कोशिश बचा गाती धंगरे लुट या छकसे लुटुन तांग चा ताकि गाती पेट पौधे सिहातुन ग्यालवा लुसेत अगर कतो दे लुतुन तंग चना हमेशा कोशिश बचा ग्याला जोस्ता उन्हीं का दो कॉल भी कोशिश बचा ग्याला जोस्ता गचु अजर बना गा तस शिलंग विलंग दांग देरी तुस पे आयांग स्पेरा चेची की दिव इन मैं मिले दांग देरी तुस यंग अचास हर जगह अगर चाना अजर बात की लाइफ स्टॉक ना तस नोर बलंग जक पी दोर पो कुले काम सो चाना नोर बलंग कम जक चास सोच बसे नोर बलंग कम जक पना गा तंग लुत पो नल्ला चाम शिक बिंग मत तंग आज से 20-25 साल दो दे मन हावी हाफ मेने गा तंग सम थोपे नु छाना द्या हाफ पो गा तेस गचु गा ताकतवर चीज से गा ती जिंगु निकल हेप चुगे दो गा तेस तार गो शा दो गा ते दु चुक शेल ता छा कि गा तेस फॉल्ट प्रैक्टिस गलत लास्ट रिक मतलब गा तेस बेंदु जैसे कि शिलांग विलांग यारा गा दंगरेंग शिलांग तंग से छाप तंग जोतना सीधा खेरे गा तेस निमा तंग दु स्कम शुक्पा दे तंगचा स्पोज बसे चाम शि यरी दि छाप पे या शिलांग पे नाइट्रोजन ई ताकत योदना दोन गंगमा लुंग्स पे गैस लाने छेंदु छाना यरी दियांग माने चांग लुस पेंदु छाना कोशिश बचा नंग यांग दंगरेंग लुद योदना नंगरेंग शिलांग योदना दोन सीधा खेरे निमा मतांगमा स्कम शुक चे नजा शिक सिल ल स्कम शुचा देंग ना न्यूट्रिएंट लॉस छना नाइट्रोजन ई करपो लुती ताकत पो लॉस छना 5% चोक्सी लॉस छ छेंदु बाकी 95% पुना देंग लुशेन सुबे छना कोशिश बचा सीधा निमा मतांगमा सिल चे जक्से बुलिक्स काम शुचा दोना हमेशा कोशिश बचा दि लुतुन दि शिलांगुन गोक्तो लुसुतना जाशिगुर दुंग सेना दोस क्यूर चिकतांग सेना नतेस नति लक्सुसुन ला या नति जिंगुन छासुनि का केरचा ताकि नति पेड़ पौधे उन या लक्स चंगमा लक्सुसुर गेलबा छेतां स्क्यूर तंग मी मल्ला पो वजा दियो इन मैमले स्क्यूर तंग मना हमेशा नते संग जरबेता ओमा ओरिजिन ला स्क्यूर तंग मना ओमा छोंक दे ओमल दनित छान ओमा दन मी वजा दो इन सुकी दे बैक्टीरिया गयो तिन सु स्ट्रिंग चियो तिन सु गावा जाचा थोपना ओमे अंग कैल्शियम मना मंगमो छाना दो जो सेना दोनी आबादी बढ़ाई छाना दो ओमल दनित सु द्या चोक्स खोरा नते दुन ला स्क्यूर तंग ना स्क्यूर तंग मना माइक्रो ऑर्गेनिज्म पो स्ट्रिन पो गाव नते नति ला चंगमा ला सुसुन ला या दोना लुतुन चोक्स पास जो से रूल चुकी तंग ओदोनी आबादी मना मंगमे छाचेन सुपा छाना कोशिश बचा हमेशा लुत यंता यरी ला शिलांग विलांग मंगमो ओदना दोन नति जिंगुनी का खेर बाबा संग नन ला जाशिक ध्यान दी प्लास्टिक व्लास्टिक ची कप से दोना स्कम्बो अम्बो योतना बाद वाद ची तंग से शेर पारी गा यार क्यूर ची तंग में कोशिश बचा 7-8 दिन यार डी टेम्परेचर पे का 22-25 डिग्री टेम्परेचर पे का प्लास्टिक कप जकना बिल्कुल स्क्यूर छोंचेन मैम खातुक पे गजवाय उमा चोक छाचेन ने देखने यंग थल दारी ना सील चिया जाक से ना बुली कुटाई बचा छाना पाउडर फॉर्म यंग क्यों से पल्ला दे यंग चाम शिक्स्ट्रीन विन यंग नाद वाद यंग सो ना दोन छोटे चाचे जो नी देखने यार देमो बसे गाते मिसाल लेप्टिन चे शकल यंग सों जो ना दोन खेरे गाते गाती चमा लक्सु सुन ला छा सुन ला तब ना गाता छा सुन रियलवा यंग चा नी गाती लक्सु सुन रियलवा छा छा
1: Marchez ça, j'ai resté qui n'a fait pas passer mon en cas sanitaire, j'ai mon adhéré à terres dans la mousse. Ça, la tienne, ça, mais d'autres quantités grand. Les négatifs, ça guette pas la gâteau, ça se passe à tinser. Dis ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,
0: ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, से रिक्स पो यहाँ जरना नाइट्रोजन फास्फोरस का पोटेशियम जरे सोलंग न्यूट्रिएन यों चेन यहाँ जरना वो दे सोलंग न्यूट्रिएन पोस्ट ताचिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निकास क्यों दे यहाँ या केवीके का

तकसम हर जगह मतलब 200-250 रुपये आना या 300 रुपये चार छाना दो फोक्चन या दो मेन मा यारे दो मी बोक सबना पी एच पो मन ते कोशिश बचा पी एच पो जबन चिकपो एसिडिक स्क्यूरमो छाचिन सुख या दो यारी साओ मदोत ना या ना छाकू छाचिन सुख या स्क्यूरमो या छाकू सोंग से पल्ला यारा दे लक्सुस पो खाशिक दो चा मिन सुख मस्क्यो दा छाना छे ngas yara misal chi tangat ki ngates biarun langa tangas nan la fridge which met sana nor wor chik sat pana ngate cha zashik cha tabene chu cha tap pana cham chik moisture yotna don gang ma phings khong chin chana chu met pana skambo chana do tri maung mar demu bas yara shao jik magic pa lus patu diao khorang in agar ka to yara sa seng nuk che risk po mane mang mek chana chana ngati alkaline soil ya saline soil che waja chikpo diu duktu mam le ki kyunki ngati deng arid zerchen ngata coal arid jabana chipona grahmo in nispo lungspo mana mang mek dulek ngate ta lungspo dulchas pos base sam shik nami ngata ma bilkul kam yo ngati aba habeng khachul na space dir bilkul nami kam yo chas pos base sam shik geri se ang nuk malap bad yo ta don gama bing se lungspo ang chachin su chana do lungspo ang chana sam shik geri se ang nuk nutrient yo ta या सॉल्ट योतना छावा ऑलरेडी सा खुरिया ना योचे छु बुली छाना दो युग ना पल्ला खोदे निजाम छु छु चाम शिक मॉइस्चर योतना युग ना बिन से खतोल ला लेपे ता खलोप ला लेपना एक पोन छु ना बहाब लाने ना मिया छे निस्पा चाम शिक सॉल्ट योतना दोन सॉलिड छाना दोन बहाब या छा मायन मा ना मिया छा मायन मा ना से सते का मेन से के योंग से मेन गा मिंदुख सा जरबे ता दे का योंग से छे रिक्स पोंगा ता स्केच चुचेन सु छे रिक्स पोंगा मोस केते फल्लांगा ती लक्सु सुन लस्केत काम चेन सु छाना कोशिश बचा दी से रिक्स पो टेस्ट हर दो तीन साल पे गैप ने तेल ते कोशिश बचा दो मिन मामा ने सोमा या मतलब गैला ट्रिक शी गरे तो सामना यार हमेशा साउ क्यों से चे कतां में कोशिश बचा चे कतां माने अगर का तो स्क्यूरमो माने मंगमो ने यार एसिडिक होती ध्यान नंगाती लक्सुस पो माने बिल्कुल ग्रोथ पो कम चेन सु गोयल काम उचे छु या दो मेन मा छकू रिक्स पो योतना छकू योतना देंग नंग नती लक्सु सुनला रगोयल काम उचे छु ता दो मेन मा सा नर्मो छोड़ना इसका मतलब यार इससे रिक्स पो रियल बाय होते छु दोन यमो यमो मैम नता सा क्रॉप रोटेशन इका फोकस तंग मरो शद बचा यार लोगन दी जिंग पे का यार इस दी का दिचिक क्रिक या नाशिक तंग ना एलोआ छुनमे रिक्सिक या स्टन में रिक्शी तांचा हमेशा एग्जॉस्टिव क्रॉप एग्जॉस्टिव जे बना सेंग ना फिंग से खेर खानी नते लक्सु शी दामे ता जैसे कि सीरियल जे नाज जे क्रो जे युपो जे या मक्का जे दोन नति छोन में रिक्सु गाव निस नति सेंग नु लुच चो चा मेना अगर का तो यारेस दिचिक ओदो तांग से ना एलो यारेस दोन्यांग स्टन में चिवा से तांग में कोशिश बचा स्टन मा या दाली रिक्सु ने दो सो ताकत चियों चिन सुकी दी हावेंग युत पी दी नामेंग युत पी नाइट्रोजन पो क्यों से दें लुट चो चेंसु समझो दी नाइट्रोजन पो दी स्टनमाउन इस स्टन में पटक पे या राइजोबियम जर खन चो चेन बैक्टीरिया स्ट्रिन ची गा और गैला स्ट्रिन पो है दोनी दोनी अंग दो सुख कुवत ची दो खुदावंदे करीम इस ताकत ची तंग जुक दे बैक्टीरिया दी नाम यंग योत पी नाइट्रोजन पो क्यों से जुने क्यों से चिपन लक्सुस लंग तंग चेंसु निस्पा खोरेस दी लक्सुस पे गना जान चीजों से ना लक्सुस पो दे नाइट्रोजन पो तंग से बाकी यंग नाइट्रोजन लूस खान पो साउन यंग जक से ना छचिन सु छाना ओदे का दे राइजोबिया मी ग्रोथ पो या कोई आबादी बढ़ाई सों से फल्ला निसाउन यंग कुले कुले यंग आबादी मंगमो सों से ना गति से रिक्स पो कुले कुले याला छचिन सु छाना क्रॉप रोटेशन पो चिपाओ ना गता वीट जेरबे तंग गता स्वंगन जे दो काम होचे सु निस्पा गता ना दवा बिल्कुल काम होचे सु नातुन या स्ट्रिनुन मखसूस फसल लुने का मखसूस यों चिंसु छाना कोशिश बचा लोगंग नते दी का छास ताप से ना यारे दियंग दिचिक चोंग वोंग ताप से या गाजर ताप से ना एलो चोंग पो एक तंग से दी का टमाटर तंग तंग में कोशिश बचा दोना हमेशा सोनस्पोस बचा ना पटक पे यंते ध्यान जगचा गाँव नी पटक पो एक डेढ़ फुट यो तंग ओदो नमो एलो यारे पटक कम यो खंची तंग ना कंपटीशन मचा यारंगा ओदे पटक कंपटीशन का मतलब न्यूट्रिएंट काफी होते ख्वा अर्गोयल पर देमो उचित सु फसल पर गैल बा उचित छाना कोशिश बचा सोनस्पोस बचा ने चिकपोना पटक को निस्पा हर एक दो साल के अपना रंग इच्छा सुन या जिंगुनिंग स्टनमा योग से तो यार इन केस का तो यारी लाछास चिचिक मैंने में चारा में दिया कांगा छास ताप तुक सामना दिका चोंग तंगना एल एलो एरएस पे का दिस साइड पे का यंग मतलब पटक पोख्यारिक छकानी मतलब छोनमा में रिक्शी तंचा ताकि नती

0: sanal lostom le zine shu saksun mi agas sakpal chang maz bierpa tabi busik pes koreng study base documented basin di tsal tsal zong zong ku tsana di ur takspa song sen ki di busik bu jakma sumchi nal jong chang mi loman las dokhar tang sen di z dokhar pu suroveliya manamang moitin sanizdanunis di busik pekas gaksip hiya kakchan Gralun Bargo Sugzerin, this Korean Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is an Danunis, this Korlal Taluk Benchyot, Dunang Dr. Mithailesh Kumar, IRS Director, CIPMC, Jammu's Mulls.
1: इस पे एक सर्वे के लिए हम आए हैं पप्टिक मॉक फिलेरा स्पीसीज के लिए उन्होंने नोटिस किया था डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इसको रिसर्च में रिपोर्ट किया था पूरी टीम ने वहां मिलकर सर्वे किया था पहले हम बारुना गए वहां पे भी जो हमने जो स्पॉट हॉट स्पॉट है वहां पे देखा कुछ हमें प्यूपा मिले भी लेकिन वो डॉर्मेंट फेज में थे जो हमने ऑब्जर्वेशन किया कि है इसका मतलब इस हमें ये दिखाई दिया है लेकिन एक्टिव फेज जब तक नहीं आएगा पता नहीं चल पाएगा कि ये कितना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है तो इसके प्रिवेंशन के लिए भी हमने बायोपेस्टिसाइड की तरफ हम कोशिश करेंगे और इसके साथ हम अपनी रिपोर्ट जो है बना करके मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे मिनिस्ट्री जो हमारे हेड हैं प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर वो आगे इसके प्रिवेंटिव मेजर के लिए क्या गाइडलाइन देंगे हम उसे फॉलो करेंगे और फार्मर के लिए जो एडवाइस है यही है कि फार्मर्स को थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना है उनको अगर जो डेब्रीज हैं आसपास पॉपुलस या सेलिस डिसीज के पेड़ के नीचे उनको या तो वो पिट बनाकर उसमें डाल दें इसका अब यही कर सकते हैं कि हम सैनिटाइज प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह रखें अपने जहाँ पे भी हैं आगे जब एक्टिव फेज में आएगा तो फिर हम एलओसी की ट्रैप या इसको भी लगा के इसको करेंगे
0: दिवासला डॉक्टर हारून रशीद हकला सीआईपीएमसी श्रीनगर सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नसरीन दुनर डॉक्टर नजीर हुसैन युतपिन दी स्कोरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन इग्रालिका मिंजी खुम्बुथंग फारूना खचे लंकर से थुईना थसगाम दुना संकुआ फील्ड सर्वे मल्लक्षों से लाड बुद्धि मुकद्दस नुमाइशी दिरिंग जखमा इसी जगह करशे फोक्तांगा छेजलुक सुयुत खन्ना लमान दुना चुमोनिस दी मुकद्दस तकरीबन खाकलने चोस चोसिन दी वसला मीमांसी छेजलुक्सी बल्टन प्रोचुक्स दी मुकद्दस नुमाइश पे स्ट्रोलिका रूहानी क्यूत चिकडिल दुना अमन लस्के द्योंग मिंगना द्वाबसिन भारतीय जनता पार्टी कारगिल यूनिटी छुपे टशी चुवे ग्रालिका यूटी लद्दाख से लेफ्टिनेंट गवर्नर विनो कुमार सक्सेना ने यम बहुत हुक्से जिले कारगिल लोकसोर मांगुन जक्सेन दी वक्सला दुन पासी जिले ले सी सी टाशी ग्यालसन दुन पासी जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसली चेयरमैन ना बीजेपी लद्दाख से वाइस प्रेसिडेंट आजी अनायत अली बीजेपी कारगिल यूनिटी सदर असदुल्ला मुंशी दुना मोहम्मद अस्करिया युतपिन दी ग्रप्स पुजना जिले कारगिली सरकारी स्कूल खची अपग्रेडेशन दुनियांग एम एस मरपो थंग रंग थंग नमसूरु दुना वाखा गोशन दृश्यत दी ग्रस पंग हकनिजला गाल हायर सेकेंडरी चोचे का इंतजामिया उजू जरीन यंग टी एस जी बुलागा जूनल एजुकेशन ऑफिस फेचाओ थजगामा नयाबत चुफिया मांग बसिन दी वक्सला यूटी लद्दाख से लेफ्टिनेंट गवर्नर विनो कुमार सक्सेनाज दी मांगुन यानि चिंग यान शुक्समो दुनिका लजबेजरेस मिनखुम तंसित भारतीय जनता पार्टी रहनुमा हेमंत बिस्वा शर्माज दिरिंग रिगलखाक आसामी वजीर आले मल से निसे रसी का यंग लगा ख्योंसिन रिगलखाक आसामी गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्याज खुआ वजीर आले मल सेफिया नस्कलेन दी तकरीपू गुवाहाटी खानापाड़ा इलाके वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पेंग मल्ल ख्योंसित डॉक्टर शर्मा नंगम्बो अरकान असम्बली भी काबीना थोगी वजीर रिफिया नस्कलीन दी तकरीब पे वजीर अजम नरेंद्र मोदी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह वजीर दिफा राजनाथ सिंह एन डी ए हुकूमत योत्खन गलखागुनी वजीर आलाना मरकजी वजीर रूनिस खाकलिनपिन डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा गलखाक आसामी निस्पा रेसी कंग थुते वजीर आले दी मलसाला ख्योंसिन भारतीय जनता पार्टी आसाम हल्का निशुबी नंगिसकर गल थोपखन इन करशा गुनपा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सी एच सी जंसकारला हेल्थ महकमे छोजना तिब्बी कैम चुके ग्रल बसियोत पिन दी कैंपियंग नत पामिंदर के नागप चुअल तसिन दी वसला नत पाउनला चेकअप बसे बुनियादी इलाज बसे मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सी बी आई रिगल खक मगरब बंगाली वजीर आला शुभेंदु अधिकारी जाती मुआविन चंद्रनाथ रत इस तुरुक न तंगचे शीर्ष मंगपुर लगा लेने रिगल खगी पुलिस पौने

0: कामयाब हुआ है।
1: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर मसावी मौके फराहम करने की वादा बंद है। वो आज SCERT बेमिना में 14 लेबोरेटरी असिस्टेंट्स में प्रमोशन ऑर्डर तकसीम करने के बाद खिताब कर रहे थे। तकरीब पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमवानी के अलावा कई आला अहदेदार भी मौजूद थे। अब रेल से मुतालिक ये खबर। रेलवेज की तरफ से जारी आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रेल सर्विस शुरू होने से अब तक लगभग 45,000 मुसाफिरों ने इसके जरिए सफर किया है, जिनमें सैयाह, ताजर, मकामी लोग और श्रद्धालु शामिल हैं। अवामी हलकों ने इस रेल सर्विस की काफी सताइश की है। दरियासना जम्मू रेलवे डिवीजन ने रेलवेज के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी लाने के लिए सुबुकदोश हुए कई मुलाजमों को दोबारा तैनात करने का फैसला किया है। जम्मू रेलवे डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने इस पहल की सताइश करते हुए कहा कि मुख्तलिफ शोबों में कुल 80 मुलाजमीन को री एंगेज किया जाएगा और इस पहल से मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्वेश्चन पेपर लीक इल्जाम के चलते रवां माह की 3 तारीख को मुनाकिद किए गए नीट UG 2026 इम्तहान को मनसूख करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जानकारी दी कि यह कदम तलबा के मफाद को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। एनटी ने मजीद कहा कि सरकार ने पेपर लीक इल्जाम का यह मामला CBI को सौंपने का फैसला किया है। एनटी ने के मुताबिक इम्तिहान दोबारा लिए जाएंगे, जिनकी तारीख अलग से इजरा की जाएगी। नए इम्तिहान के लिए तलबा को नई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, न ही उन्हें कोई इजाफी फीस अदा करना पड़ेगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज नर्सों का बैनल अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में नर्सों के कलीदी रोल को उजागर करके उनके खिदमात का इतराफ करना है। इस दिन के सिलसिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नर्सिंग शोबे से ताल्लुक रखने वाले 15 पेशावरों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड अता किए। ये अवार्ड उन्हें नर्सिंग के शोबे में उनके पेशेवराना रोल के लिए अता किए गए। सदर जमहूरिया ने तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में नर्सों के अहम किरदार को सराहा। नर्सों के बैनल अक्वामी दिन के तालुक से GMC श्रीनगर के शोबे ऑप्थल्मोलॉजी की सीनियर ग्रेड नर्स ताहिरा अख्तर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: जब हमारे पास आते हैं पेशेंट, हम कास्ट वगैरह कुछ नहीं देखते, हम ट्रीट इक्वल करते हैं। हम तो पहले उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, उनको फिजिकली फिट रखते हैं, उनको केयर करने में उनको हम कोई कमी नहीं रखते हैं सर। हमारे दिल में बहुत सुकून होता है जब हम पेशेंट को केयर करते हैं। जब हमारा पेशेंट ठीक होता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है उस टाइम। और सर, हमारी कुछ नर्सेस ये पेशेंट हो गए, कैंसर पेशेंट खुद भी होते हैं तो भी वो पेशेंटों का ट्रीट करते हैं अच्छे से। वो ये नहीं करते हैं कि हम खुद पेशेंट हैं, वो उनको फील ही नहीं करने देते हैं, वो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं।
0: दरियासा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में भी नर्सों का बैनल अक्वामी दिन मनाया गया। इस मौके पर स्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में नर्सों के रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि नर्सेज हमदर्दी और जज्बे ईसार के तहत मरीजों की खिदमत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि स्किम्स में 1200 नीम तिबी अमले की तैनाती पर गौर किया जा रहा है, जिनमें से 500 असामियां नर्सिंग स्टाफ के लिए मखसूस होंगी।
3: आज के दिन पे इसका जो थीम है कि नर्सेज हमारा फ्यूचर है और उनको कैसे एम्पावर किया जाए, तो इसके बारे में जो आज सेलिब्रेशन हुई, इसमें हम अपनी नर्सेज को मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन का और खासकर स्किम्स का एम्बलम ऊंचे रखा है अपनी डेडिकेशन से, अपनी सेल्फलेस सर्विस से। और जैसे इंस्टीट्यूट का इतना बड़ा नाम है, उसमें इनका काफी रोल है। जो लोगों को इस इंस्टीट्यूट पे भरोसा है, इस प्रोफेशन पे भरोसा है, इसमें इनकी मेहनत का नतीजा है।
0: आकाशवाणी के कयाम के 90 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में आज एक महफिल

जय हिंद फौजी भाइयों, आकाशवाणी कारगिल की जानिब से आपका हम सफर अब्बास यावर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके जज्बों और आपकी वतन से मोहब्बत का है ये 45 मिनट का सफर।

अभी आपने साजन फिल्म में कुमार सानू और अलका याग्निक को समाज फरमाया। फौजी भाइयों, घर से दूरी और अपनों का इंतजार, ये दर्द सिर्फ एक सिपाही ही समझ सकता है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत आपके दिल की तर्जमानी करेगा। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

0: once again. CBI registers case in alleged NEET paper leak issue. Multiple suspects detained across several states. In Tamil Nadu, AIADMK splits. Bigger faction with 30 MLAs set to support Vijay's TVK government floor test tomorrow. Chief Justice of India Suryakant constitutes high-powered committee to prepare blueprint for modernization of courts across the country. India to host two-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Stock indices tank around 2% as elevated oil prices and US-Iran tensions dampen markets' confidence. And in badminton, Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advance to second round of Thailand Open in Bangkok. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबराने असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय की TVK हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है। कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट UG 2026 के मुबैना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि उसने नीट UG इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक हो जाने के मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों के साथ एक FIR दर्ज की है जिसमें मुजरमाना साजिश, जालसाजी, मुजरमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को खत्म करने की कोशिश और इम्तिहानात में नामुनासिब तरीकेकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक्ट 2024 के तहत खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। नई दिल्ली में नीट इम्तिहान की मनसूखी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के DG अभिषेक सिंह ने बताया कि NTA तलबा के लिए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करेगी और ये मुनसिफाना तरीके से मुनक्किद किया जाएगा और दोबारा इम्तिहान के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी।
2: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। हमने NTA के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे और हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे।
1: इससे कबल आज दिन में NTA ने इस माह की 3 तारीख को मुनक्किद किए गए नीट UG 2026 इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस की खसूसी कार्रवाइयों से मुतालिक ग्रुप SOG ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। SOG ने कल एक मुबैना सरगना को जयपुर से हिरासत में लिया था जिसका नाम मनीष बताया जाता है। इससे कबल जराये के मुताबिक राजस्थान पुलिस SOG ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें मुबैना साजिश रचने वाला सिकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार शामिल है। इसके अगले दिन नीट का इम्तिहान देने वाले 4 तालिबे इल्मों को भी गिरफ्तार किया गया था। नासिक पुलिस ने भी नीट पेपर लीक मामले में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया था। बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्वा सरमा ने मुसलसल दूसरी मुद्दते कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद

0: आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया।
1: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के हमरा कानून साज असेंबली के चार अरकान ने भी काबीनी वुजरा की हैसियत से हलफ लिया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजनता नियोग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मुख्तलिफ मरकजी वुजरा और एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। तमिलनाडु में जोसेफ विजय की क्यादत में नौ मुंतखब शुदा टीवी के हुकूमत के लिए कल अक्सरियत की आजमाइश से कबल सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। एआईए डीएमके हुकूमत को हिमायत फराहम करने के मामले में दो ग्रुपों में बट गई है। साबिक वजीर आला और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडापड़ी के पलानास्वामी की क्यादत वाले ग्रुप ने पार्टी के मेम्बरान असेंबली को हिदायत दी है कि वो टीवी के हुकूमत की हिमायत न करें। सीनियर लीडर अग्री कृष्णामूर्ति ने खबरदार किया है कि किसी एमएलए ने पार्टी व्हिप की खिलाफवर्जी की तो उसे पार्टी से बदतरफी का सामना करना पड़ेगा। इधर 30 मेंबरानी असेंबली की हिमायत का दावा करने वाले एक और ग्रुप ने एसपी वेलोमनी को एआईए डीएमके की कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर चुन लिया है। ग्रुप के लीडरों ने साबिक वजीर सीवी शनमुगम की रिहायशगाह पर एक मीटिंग के बाद आज मीडिया से मुलाकात की। शनमुगम ने ऐलान किया कि यह ग्रुप अक्सरियती वोट के दौरान टीवी के हुकूमत की हिमायत करेगा। हुकूमत को अम्मा मक्कल मोनिटर कसगम के वाहिद एमएलए एस कामराज की हिमायत भी हासिल है, जिन्हें आज उनकी पार्टी ने बरतरफ कर दिया था। वजीर आला विजय कल से हिमायत करने वाली पार्टियों के लीडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि अक्सरियत साबित करने की आजमाइश से कबल अपनी हिमायत को मजबूत कर सकें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों की जदीदकारी और इसकी खातिर 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की हुकूमती मदद हासिल करने के लिए एक खाका तैयार करने की गरज से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। अदालतों के बुनियादी ढांचों से मुतालिक यह मुशावरती कमेटी हुकूमत की जानिब से मुसलसल माली मदद के जरिए अदालतों में बुनियादी ढांचे के हवाले से कमियों का इजाला करेगी। अवामी कामकाज से मुतालिक मरकजी महकमे के डायरेक्टर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भी पैनल के मेंबरान होंगे। कमेटी को इस साल 31 अगस्त तक वजीर आजम की इक्तसादी मुशावरती कौंसिल के रुकन संजीव सानियाल को अपनी तफसीली मालूमात और रकम की जरूरियात दाखिल करने का काम दिया गया है। साइबर क्राइम से मुतालिक भारतीय तालमेल मरकज ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं ताकि साइबर नौइयत की इक्तसादी जालसाजियों से निपटा जा सके और बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के पूरे मुआशी निजाम में म्यूल खातों में कमी की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत एक साइबर सिक्योर भारत की तश्कील की जानिब मुस्तकिल काम कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात को उजागर किया कि साइबर जराइम को खत्म करने के सिलसिले में म्यूल खाते भी अब एक बड़ा चैलेंज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स वज़राए खारजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर नजरियात का तबादला करेंगे।
2: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पता चल जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहे हैं, कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे के बारे में बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि उनके दौरे के दौरान तवानाई की यकीनी फरहमी पर बातचीत होगी। जनाब जायसवाल ने वजीर आजम के नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड्स के दौरों के सिलसिले में भी मुत्तला किया।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम

0: ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद किए जाने से मुतालिक खबरों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इन खबरों से इस बात की तस्दीक होती है जो पहले से मालूम था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में एक मखसूस मुकर्रर और तालमेल से की गई कार्रवाई थी जिसका मकसद पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नीस्तो नाबूद करना था।
0: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत खुद को तमाम रुकावटों के मुकाबले अपने तौर पर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, ख्वाह वो रुकावटें इक्तसादी हों, तकनीकी हों या जोग्राफियाई सियासी। नई दिल्ली में सीआईआई सालाना बिजनेस समिट 2026 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया हर रोज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम, जोग्राफियाई, सियासी और कारोबारी सूरत हाल की वजह से बहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत लगातार इस मुखालिफ सूरत हाल को मौके में तब्दील करता रहा है। भारतीय इक्तसादी बुनियादों को इंतहाई वसी तर करार देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत कभी दबाव में नहीं आया और चैलेंज भरे दौर में हमेशा ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अहलकारों, अवामी शिकायतों और पेंशन के महकमे के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की सदारत करेंगे। काफी वक्त से अल्तवा में पड़ी 985 शिकायतों पर जिनका ताल्लुक 37 वजारतों और महकमों से है अदालत में बरमौका हल के लिए गौर किया जाएगा। पेंशन और पेंशन याफ्तगान के महकमे ने बताया कि अब तक 15 पेंशन अदालतों के जरिए तकरीबन 28,000 मामलों पर गौर किया जा चुका है जिसमें से तकरीबन 20,000 को बरमौका ही निपटा दिया गया जिससे कामयाबी के 71% की शरह का इजहार होता है। स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मुश्तरका तौर पर तीसरी जमात से आठवीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच और मसनूई जहानत से मुतालिक एक नई दरसियात तैयार की है। इस पहल के मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि यह दरसियात पहले ही नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद मुतला किया कि एनसीईआरटी नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जमात के लिए भी मसनूई जहानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने कल के लिए राजस्थान में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। कल तक गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए साहली कर्नाटक में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस दौरान मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 से 3 दिनों के लिए शिमाल मशरकी खत्ते, अंडमान और निकोबार जजायर और अरुणाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमेरिका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। सेंसेक्स 1456 पॉइंट्स या 1.92% की कमी के साथ 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में 436 पॉइंट्स या 1.83% की कमी आई और यह 23,380 पर बंद हुआ। गैर मुल्की करेंसी की मार्केट में आज रुपए की कदर में 32 पैसे की कमी आई और 1 डॉलर की कदर रिकॉर्ड कम होकर 95.63 रूपये हो गई। बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जेरमी गॉन्टिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। बैंकॉक में इस साल बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा। गुजरात टाइटन्स के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सीबीआई

आकाशवाणी रेडियो करियले स्टेडियो शिना प्रोग्राम पुनर्गी मोछोरा बड़ा लाख हाजिर हनोस शिना प्रोग्राम पुनर्कुंडियातिक चुने बड़े सजारे रारवी छोटमुस जुगा सलाम थेमोस दखन की छो कौन हाँ तो कनी दिशी हाँ तो हवास गा शुरायार गा बये बेयात तो ने बेंसु जीदो दाबो ने रानी गा दुआ थे बोन की कौन हाँ तो खुशी गा सेहतु साथ जिंदगी गुजार थो की कर सजारे रारवी शिना प्रोग्रामो अश सिर अनि जेल जहन की बेंसु मुश्किल एक थे बोन अशनु प्रोग्राम जा बैन अलावामी यू में सेहत नबातात यानी कि तुम तलुश गा बाकी फसले गा कनी ये चीज एक कि जो इंसान ही कार खुदा वंद आलमी दे गऊँ से कनी हिफाजत तक चो नहीं सिरे तो उसे बार आर बेसु मुश्किल एक थे बोन तो अश स्टेडिया जा आसो जा एक मना चिकेरेगा मुसु दावत देरे से नरा मुश्किल एक थे गऊँ रोहन जनाब गुलजार हुसैन साहब तो रोसे गरी सनी एक मोजी तो अनी बार रोसे राजीबो जी तो सजार इजार भी अनु प्रोग्राम आकाशवाणी रेडियो करगिल स्टेडियो जो छो परिजी वहनेत तो सजार इजार भी हर कला बॉय माई ते अनि तारीख बॉय माई ते पूरी दुनिया तिश बिन लोकामी यू में सेहत नबातात यानी कि तुम तलुशो देश मने बोजा अनु देश मनो के मकसद एक अनि हन की सिर्फ तुम तलुश चा नुश बल्कि फसलो अहमियतो बारार गा असने यानी जमींदार और जको रे शूर पैदा थो के कर अनु प्रोग्राम मने बोजा तो इंसान रे अनि पेड़ पौधे जानवर अनि माहौल बका लाई निहायत जरूरी चीज है खन तो असनी खुराक ऑक्सीजन रबाटी माहौल तवाजुन बुढ़े अनि पेट पौधे का तुम तलुशी बदौलत कायम हन अगर अनि पेट पौधे तुम तलुश अनु फासिल सेहतमंद हन तो इंसान ही सेहतमंद जिंदगी गुजराई बोई बुझे तो अनि सी कार्यो अक्वामे मुत्तहिदा का दीगर आलमी इदारों या अनुदेज व खास अहमियत एक छोड़ेगा ने ताकि पूरी दुनिया तिशा ने जकोरे तुम तलुश गा अनि पेट पौधे गा अनि फासिलो हिफाजती अमली इकदाम एक थे बुझे सजारे जारवी अनि तुम तलुश अनि नीली जमीन या जिंदगी बुनियादी एक हिसाक बिल ब्याए नीली से असोई तिजोक दे बुझे ऑक्सीजन दे बुझे तो ने इंसानी जिंदगी बुढ़ो जो बड़ी अहम जरूरत एक गबिल थे राजीव बुझा अनि से अलावा वही सुखोन भाई यानी कि ब्रियू आटे मकई शाह फल फ्रूट या अनि बुढ़े असोई ते पेट पौधो जो हासिल बोई बुझे अगर अनि पेट पौधे का अनि फसल और बीमारियां तुक बोइए या क्री तुक बोइए तो अनि सर नुकसान बोई बुझे तो ने फसल ही तबाह बोई बुझा अनि से अनि खुराक की कमी पैदा थो की कार अनि पेट पौधे फसलो सेहती हिफाजत थो की इंसानी अव्वली जिम्मेदारी बिल सजार इजार हुई पूरी दुनिया तिश्टकियों गले तो लाए खतरनाक बीमारी तुक क्री तुक से अनि फसल और नुकसान अरे बुझा तो बेसु टकेस तो बाज अवकात मौसम ज तब्दीली बोई बजे यानी कि अरु ने वजों हूँ खोने अरु वजीब हो जाऊँ वजो न हूँ दे जो अरु ने वजीब हो जाऊँ वत तो लाओ वजीब हो जाऊँ तो अनि सीजे योग बेनी सैलाब गा खुशुकसाली गा